0: साधारण सभा में उपस्थित होने संबंधी सूचना।
1: एस खिमती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड तामाकोशी पांच केनेटा दोलखा को 14 वार्षिक साधारण सभा यही मिति 2083 साल वैशाख 28 गते सोमवार का दिन तामाकोशी गांवपालिका सात हावा देउराली में मिति 2083 साल वैशाख 29 गते गोकुलगंगा गांवपालिका वडा नंबर 4 बेताली में वैशाख 30 गते तामाकोशी गांवपालिका पांच केनेटार में बिहान ठीक 9 बजे हुन गइरहेकाले जीरी हावा र श्यामाका शेयर सदस्य जीवहरूलाई हावामा, रसनालु बेताली नामाडीका शेयर सदस्य जीवहरूलाई बेतालीमा र सहरे फर्पू खिम्ती गेलु फुलास्टीका शेयर सदस्यहरूलाई किर्नेमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु।
0: साधारण सभामा छलफल हुने विषयहरू
1: संचालक समिति अध्यक्ष कोषाध्यक्ष र लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजकको प्रतिवेदन विनियम नियमावलीहरू संशोधन छलफल नयाँ नीति कार्यविधिहरू छलफल वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना आर्थिक वर्ष 2082-83 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2082-83 को वैशाख 15 सम्मको हिसाब परीक्षा सूची आय व्यय तथा बजेट विवरण तथा अन्य प्रस्तावहरू उपस्थित